तमाशा बरा इश्कता जरा पिचकरे भरा उड़ोदे रंग उड़ोदे रंग उड़ोदे रंग मखमली पड़ जा आत पुलवे की रात चांदनी।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

poi quando io dice il nome colpisce la mia Adamana Snehe Siti Teshu Shimana Saush Udishi Mahasati Vanda No Tattva Ki Yatra Par Gatishil Hone Ke Liye Upasthit Sradhano Srotagan Jiva Jiva Punnam Pava Sanasam Royani Jadana Bandha Mokho Yataha No Tattva Hunti Nayava No Tattva Hunti Nayava No Tattva No Rahasya Rahasya Usko Kehte Hai Ki Kitna Bhi Jaan Lo Kitna Bhi Jaan Lo तो जाना कम जाता है अनजाना ज्यादा रहता है उसको रहस्य कहते हैं जिसको पूरा जान नहीं पाते और उसमें से पहला तत्व है जीव तत्व क्या है आप कौन हो आप कौन हो आप कौन हो नहीं अब जीव नहीं हो अब सजीव क्या है हम जीव नहीं हम क्या है सजीव है पहले जीव सजीव राजीव तीन शब्द समझ लीजिए जीव कौन है सिद्ध जीव है जीव के दो प्रकार है एक संसारी जीव और एक सिद्ध जीव सिद्ध जीव जीव है वो शुद्ध जीव है हम मिक्स है कैसे मिक्स है हम इसलिए हमको क्या कहते हैं सजीव कहते हैं क्या कहते हैं ये पाटा कैसा है निर्जीव है ना डेड बॉडी कैसी है और जो डेड नहीं उसको क्या कहेंगे आप सजीव है क्या है और सजीव के प्रैक्टिकली चार अनिवार्यता होती है सजीव किसको कहना और निर्जीव किसको कहना सजीव किसको कहना निर्जीव किसको कहना और जीव किसको कहना टेंशन रहना है ना जीव सजीव और अजीव आज अपन जीव तत्वों की बात कर रहे हैं जीव कैसा है सजीव भी है और शुद्ध जीव भी है जो शुद्ध जीव है उसमें कोई भी आश्रय नहीं होता है कोई संवर नहीं होता है कोई बंध नहीं होता है कोई निर्जरा नहीं होती है वहां केवल मोक्ष ही रहता है आश्रय भी नहीं है और आश्रय नहीं बंधने इसलिए पुण्य और पाप भी नहीं है और बंधा हुआ नहीं इसलिए निर्जरा भी नहीं है हम सजीव हैं और सजीव में आश्रय 24 आवर्स जारी है सौर भी जारी है निर्जरा भी जारी है और बंद भी जारी ये चार प्रक्रिया सजीव में कंटिन्यू चलती है अब ये चार प्रक्रिया ऑटो मोड पर भी चलती है ऑर्गेनाइज भी की जा सकती है मैनेज भी की जा सकती है ऑटो मोड पर रहने का मतलब क्या है जैसे आपका किडनी काम कर रही है आपका लिवर काम कर रहा है आपको पता चल रहा है ऑटो मोड पर आप खाते हैं
डाइजेस्टिव सिस्टम उस पर वर्क करती है, कैसे करती है, ऑटो मोड पर वर्क करती है। उसमें आपको कोई बुद्धि लगाने की आवश्यकता, आपके पास काम क्या है, केवल उनमें चबा कर खाओगे तो सिस्टम को काम करना आसान रहेगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है, यहां तक अपने हाथ में, घाटी के नीचे नहीं उतरता है तब तक तुम्हारे हाथ में क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या अंदर जाने देना क्या अंदर नहीं जाने देना, उस पर क्या काम करना कैसे प्रोसेस करना, ये सारा क्या है ऑटो मोड पर है। तो ऐसी चार प्रक्रिया ऑटो मोड पर भी ऑटो मोड पर चलती है, और इन चार प्रक्रिया को कंट्रोल में ले सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। और जो इन चार क्रियाओं को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, अंडर कंट्रोल लेता है, वो मोक्ष में जाता है। जो इन चार प्रक्रियाओं को ऑटो मोड पर चलने देता है वो संसार में भटकता है, उसकी पुण्य का भी बंद हो सकता है, पाप का भी बंद हो सकता है, लेकिन उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। धर्म क्या है, इन चार क्रियाओं को अंडर कंट्रोल लाना, अपने नियंत्रण में लाना, कि किसका आश्रय होगा, किसका संवर होगा, किसकी निर्जरा होगी, किसका बंद होगा, ये ऑटो मोड पर नहीं चलेगा। ये जो तय करता है वो जीव तय करता है। कौन तय करता है, और कौन सा जीव तय करता है, जो सोया हुआ जीव कौन तय कर सकता है, दरवाजा लगाना कि खुला रखना, कौन सी खिड़की खुली रखनी कौन सी खिड़की बंद रखनी, ये सोया हुआ आदमी तय कर सकता है कि जागा हुआ आदमी तय कर सकता है। वैसे ही इस सजीव का जीव जब जाग जाता है तो देखता है कि कौन सी खिड़की खुले रखनी कौन सी खिड़की बंद करनी है, किसको पकड़ के रखना है और किसको जाने देना है। ये कौन तय कर सकता है, केवल जागा हुआ जीव तय कर सकता है, सोया हुआ जीव तय नहीं कर सकता है। तो ये जो जीव है, जीव के दो प्रकार, एक सजीव और एक शुद्ध जीव। कितने शुद्ध जीव, अब सजीव के पास और निर्जीव के पास क्या अंतर है, जो भी जीव है चाहे एकेंद्रीय हो चाहे द्वेंद्रीय हो चाहे तेंद्रीय हो चाहे चौरेंद्रीय हो चाहे पंचेंद्रीय हो चाहे सूक्ष्म जीव हो चाहे निगुण हो चाहे वायरस हो, वायरस भी क्या है, हाँ सजीव है, क्या है सजीव है, जो हवा हम ले रहे हो भी क्या है सजीव है, ये सारा क्या है सजीव है। ये सजीव क्यों है, किसको सजीव कहेंगे, जो चार काम करता है, आहार करता है, क्या करता है आहार करता है, आहार का जो आहार ग्रहण करके जो अपनी बॉडी बनाता है, उस बॉडी में जिसके पास इंद्रियां होती है और जो श्वासोच्छ्वास करता है, क्या श्वासोच्छ्वास करता है, ये चार सजीव के लिए अनिवार्य है। वो एक इंद्रिय रेंद्र जी, बेन्द्रिय रेंद्र जी, पंचेंद्रिय देवता रेंद्र या नारकी रेंद्र, ये चार क्रियाएं उसकी होती ही होती, आपकी भी होती है मेरी भी होती है। आहार करते हैं, और आहार भी कैसा करते हैं, मुंह से भी करते हैं, रोमहार भी करते हैं, इंद्रियों से भी आहार करते हैं, किसे आंख से भी, आहार का मीनिंग क्या है, बाहर से ग्रहण करना है, और इसको आहार पर्याप्ति कहते हैं। चार चाहिए, कितने चाहिए, चार चाहिए, और उसमें जिसको आप पहचान सको उसमें क्या है, दो है, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। वो श्वासोच्छ्वास करता है कि नहीं करता, अमृत करता है कि नहीं करता है। अपने स्कूल के दिनों में
दो तीन प्रयोग करे होंगे कि मोमबत्ती जलाई है और उस पर ग्लास रख दिया है और थोड़ी देर के अंदर क्या हो जाती है, मोमबत्ती हवा का झोंका नहीं आया है, हवा का झोंका नहीं आया है और मोम भी है फिर भी बुझ गई, क्यों? ऑक्सीजन समाप्त हो गए, आहार तो है वहां पर, आहार भी है शरीर भी है लेकिन ऑक्सीजन फिनिश हो गया, क्योंकि जलते समय क्या होता है वो ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जैसा आप करते हैं मैं करता हूं सब करते हैं, तो जहां ये प्रक्रिया चलती है उसको सजीव कहते हैं, जीवता मिट्टी और निर्जीव मिट्टी। आपने कई बार सुना होगा कि जहां अणुवस्त्र एटम बम गिर जाता है वहां की जमीन निर्जीव हो जाती, बंजर हो जाती है, ईंट जिसको वृक्ष बनाते हैं आप मिट्टी की ईंट वो भी कैसी है, निर्जीव है क्योंकि वो आग से गुजर गई, अब उसमें श्वासोच्छ्वास और जिंदा मिट्टी हाथ में लो, जिंदा मिट्टी हाथ में लो तो आपको स्पंदन का महसूस होगा, स्पंदन का एहसास होगा। अभी आप जानते हो ना आर्टिफिशियल डायमंड आते हैं, आर्टिफिशियल डायमंड आते हैं बिल्कुल ओरिजिनल डायमंड से भी अधिक तेजस्वी दिखते हैं, कैसे पहचानोगे आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? नेचुरल डायमंड सजीव होता है, नेचुरल डायमंड सजीव होता है, उसको हाथ में लिया तो आपको स्पंदन का एहसास होगा, वाइब्रेशन की अनुभूति होगी कि वो श्वास करता है, श्वासोच्छ्वास करता है, वो कंटिन्यूस श्वासोच्छ्वास करता है। और जो आर्टिफिशियल डायमंड है उसको तुम हाथ में लो सुंदर दिखेगा, डिक्टो दिखेगा लेकिन वो श्वासोच्छ्वास नहीं करता है। जैसे सेल आप यूज करते हैं, जो बैटरी आप यूज करते हैं, बैटरी श्वासोच्छ्वास नहीं करती है, बैटरी चार्ज हो सकती है लेकिन किससे चार्ज होती है, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है। बैटरी किससे बनी है, केमिकल से बनी है और सारा केमिकल कैसा है, निर्जीव है, इसलिए जो सेल की घड़ी पहनते हैं उसका संगठन नहीं होता है क्योंकि वो कहे निर्जीव है, श्वासोच्छ्वास नहीं करती है। और आप सभी को पता होगा जितने भी सेल रहते हैं वो वाटर प्रूफ ईयर प्रूफ रहते हैं, अभी लाइट जलाई है, लाइट जल रही है, अभी इसके अंदर हवा है क्या, हवा है इसके अंदर, और लालटेन में की हवा बंद हो जाए तो लालटेन जलेगी क्या, और इसके अंदर हवा में तो जलेगा क्या, नहीं। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी ये सजीव नहीं है क्योंकि वो श्वासोच्छ्वास नहीं करती। तो जीव ये चार क्रियाएं उसके ऑटो मोड पर चलती है, आहार शरीर इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, इन चार को जो मैनेज कर ले, चार को मैनेज कर ले, ऑर्गेनाइज कर ले, ऐसा आहार करना, ऐसा शरीर बनाना, कैसी इंद्रियां बनानी, कैसा श्वास लेना, कैसा श्वास छोड़ना, इसको जो ऑर्गेनाइज कर ले वो डेवलप होता है, वो ऑटो मोड पर नहीं चलता है। आपका श्वास कैसे चल रहा है, छोटी
जिसको माँ ने बिगाड़ा नहीं है। मैं छोटे बच्चे कैसे देता हूं जिसको माँ ने बिगाड़ा नहीं है। जो जिसको सोना है तब वो सोता है, जो उसको उठना है तब उठता है, वो छोटा बच्चा है। और जिसने कब सोना ये माँ ने तय किया है, कब उठना ये माँ ने तय किया है, कब उसने खाना है, कितना खाना है, माँ ने तय किया है, वो बिगड़ गया। और हम सब बिगड़े हुए हैं। हमको सबसे पहले बिगड़ा हमारे आहार को, हमारे नींद को, हमारे श्वासोच्छास को, और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी को सबसे पहले किसी ने बिगाड़ा है। हेलो, या थाली लेने लारे जावे छी। मैं कई बार माओ को कहता हूं, ऐसा तुम्हें किसी ने खिलाया बिना भूखे? हेलो, कितना अच्छा लगेगा ना। ऐसा जिनका हो गया ना, और फिर उसने सुना कब, जब मां सुनाएंगे तब, उसने उठना तब, जब मां ने उठना था। ऐसा जिस बच्चे का शुरू नहीं हुआ है, उस बच्चे को तुम सोता हुआ देखो, बैठा हुआ देखो, चलता हुआ देखो, कुछ भी करता हुआ देखो, उसके श्वास के साथ उसका पेट जो है अंदर बाहर होता है। कैसे होता है? श्वास छोड़ा, पेट अंदर चला गया, श्वास लिया, पेट फूल गया। जीव है
जैसे जैसे ऊपर का देवलोक शुरू होता है वैसे वैसे उनका श्वास गहरा होता है। श्वास क्या होता है? और जैसे श्वास गहरा होता है वैसे उनका सुख बढ़ते जाता है, वैसे उनकी भूख कम हो जाती है, वैसे उनके कषाय कम हो जाते हैं, वैसे उनका क्रोध कम हो जाता है, वैसे उनका अहंकार कम हो जाता है, वैसे उनकी माया कम हो जाती है। श्वासोश्वास के आधार पर आपकी एक धारणा चली हुई है कि जितने श्वास लेकर के लाया उतनी आयुष्य है। नथिंग। 33 सागरपम का आयुष्य 60वें नारकी के जीव का भी है और 33 सागरपम का आयुष्य श्रेष्ठतम देव का भी है, लेकिन 60वें नारकी का जो जीव है, नारकी का जीव, वो एक मिनट में 100 श्वासोश्वास करता है। कितने? एक मिनट में 100 श्वासोश्वास करता है। और जो श्रेष्ठतम देव है अनुपरिमाण वासी, वो 33 पखवाड़े में एक श्वास लेते हैं। कितना सुना? 33 पखवाड़े, समझे कि नहीं समझे? 33 पक्ष, 33 पूनम, 33 अमोषा, 16 महीने, चक्कर तो नहीं आया ना? कितना? 16 महीने। उनका तेज, उनका होश, उनकी शांति, वो जो यहां वहां से आयुष्य पूर्ण करके यहां थे, यहां से सीधा मोक्ष में जाते। इसलिए जैन आगम कहते हैं तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति, पीस ऑफ माइंड, वो तुम्हारी श्वास की प्रक्रिया पर निर्धारित है। जितना तुम्हारा श्वास लंबा और गहरा होगा उतने तुम्हारे सारे टेंशन कामने से आएगा। श्वास कैसा होना चाहिए? लंबा श्वास, गहरा श्वास, लंबा श्वास, गहरा श्वास। लंबा और गहरा श्वास करने के लिए क्या करना पड़ता है? सीधा बैठना पड़ता है। अर्थी झुकने बैठो ना तो डायफ्राम पूर्ण हो तो हो ही नहीं सके, सीधा बैठना पड़ता है। क्यों? भगवान महावीर ने अपने पास दीक्षा लेने वाले इंद्रभूति गौतम को, किसको? इंद्रभूति गौतम को, सुधर्मा स्वामी को, जैसे उन्होंने दीक्षा ली तो सबसे पहले 6 बातें उनको सिखाई कैसे चलना। और इसका सूत्र क्या? चलते समय बराबर बेली ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग, नेवल ब्रीदिंग होनी चाहिए। और नेवल ब्रीदिंग चलते समय हो गई तो यहां फैन जमा होने का काम ही नहीं रहा। कैसे बैठना, कैसे खड़े रहना, कैसे बैठना, ये अनुभूति गौतम को सीखा। तो आप आया ना मेरे पास तो पहले बैठना सीख, पहले चलना सीख, पहले खड़े रहना सीख, और फिर भोजन करना सिखाया, खाना सिखाया, बोलना सिखाया। कैसे बोलना, कैसे बोलने में क्या है? सीक्रेट बता रहा, सारे सीक्रेट ओपन कर रहा हूं। हम जो बोलते हैं ना, जिंदगी क्या होता है, बोलते समय हम श्वास मुंह से ले लेते हैं, ध्यान ही नहीं रहता अपना। और तीर्थंकर महावीर वो टेक्निक सिखाते थे कि बोलते समय भी श्वास नाक से आना चाहिए। और नाक से श्वास आएगा तो गला कभी ड्राई होगा ही नहीं। मुंह से श्वास लेते हैं तो ड्राइनेस आना ही आना है। तुम सिखा देते, जितना तुम्हारा श्वास गहरा होगा उतना तुम्हारा
किसी भी पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जीव तत्व की पहली चार बातें याद रखना, हम सजीव है। कौन है हम? सजीव है। और सजीव के पास, हर सजीव के पास चार क्रियाएं कंटिन्यू चलती है, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। एक ऑटो मोड पर चलता है। कछुआ लंबा सांस लेता है, लंबी उम्र है उसकी। श्वास लंबा लीजिए तो मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यानी अगर और बात करनी हो तो की जा सकती है कि ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है? ऑर्गेनाइज कर। और आगे बात बताऊंगा आश्रम के समय कि सबसे बड़ा आश्रम का जो सोर्स है वो श्वासोच्छ्वास है। यदि श्वास तुमने कॉन्शियस ले ली, सजगता के साथ ले ली, उसके साथ कौन सा विचार आ रहा है इस पर कंट्रोल हो गया तो ध्यान हो गया। श्वास के माध्यम से बाकी नौ प्राणों को शक्ति मिलती है। दस प्राण है, कितने प्राण है? कितने प्राण है? आगे आएगा, धीमे धीमे आएगा सर। दस प्राण है। और इन सबको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, इनको संयम में रखना, इसको धर्म कहते हैं। और वो मंगल है, धम्मो मंगल मुख्यतः माहिसा संयमो। तो ये संयम है। यदि श्वास में हिंसा हो गई तो काम समाप्त हो गया। और श्वास में अहिंसा आ गई, श्वास में संयम आ गया, श्वास में तप आ गया, तो देखो क्या मजा आती जीने की। ये नौ तत्व की शुरुआत हो गई आज से आपकी। क्या समझ में आ रही है? और जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ जाए उसको मैं कल से बाहर क्वेश्चन बॉक्स रख देता हूं, आते समय उसमें डाल देना। जो जो आपकी बात समझ में नहीं आई होगी उसका एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा। तो जीवा, ये जीव है। कौन है? पहला तत्व कौन सा है? जीव तत्व है। आपको बहुत सारे प्रश्न आते हैं मन में, बहुत प्रश्न आते हैं कि साइंस ने अब कोलन बना लिया, बनती है और लंबा प्रयोग चल रहा है डेड बॉडी को प्रिजर्व करने का, और वो खरगोन पे लगा करके कि जिस बीमारी से मरा है उस बीमारी की दवा आएगी तब उसको अपन जिंदा करेंगे। यदि तीर्थंकर महावीर को पूछोगे तो तीर्थंकर महावीर कहेंगे नॉट पॉसिबल, ऐसा हो सकता नहीं। जो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आते हैं थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेता। ये कोलन क्या है? किसको कहते हैं जीव? किसको कहते हैं सजीव? जैन अगम में कोलन की स्वीकृति है ना, टेस्ट दूध की भी स्वीकृति है। योनि पाहुर नाम का एक अगम था, बहुत नाम का एक आगम था, उसमें वो सारी प्रक्रिया दी गई थी कि चावल से, चावल के सजीव चावल के दाने से कैसे आदमी को तैयार किया जा सकता है। एक कहानी चलती है कि योनि पाहुर नाम का ग्रंथ गुरु अपने शिष्य को सिखा रहे थे, और उसमें वो विद्या वो प्रक्रिया गई कि कैसे मछली का प्रोडक्शन बढ़ाना। किसका? मछली का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना। और असावधानी से किसी गृहस्थ ने

पूछा क्या गड़बड़ गई? बोले उस दिन आप अपने चेलों को सिखा रहे थे, मैंने सीख लिया, जान लिया और उसका प्रयोग मैंने करना शुरू कर दिया। रासायनिक प्रक्रिया थी। क्या थी? रासायनिक प्रक्रिया थी। ये द्रव्य डाल दे तो जीव उत्पत्ति। लेकिन जीव उत्पत्ति किसको कहते हैं? इसको समूर्छित जीव कहते हैं। कौन से जीव कहते हैं? समूर्छित जीव। मतलब क्या हुआ कि इनको केवल ऐसे जीवों को शरीर धारण करने के लिए केवल एक पर्यावरण लगता है, एक एटमॉस्फेयर लगता है, एक एनवायरमेंट लगता है। वो एनवायरमेंट मिल गया कि जीव तैयार हो गई। जैसे बारिश के दिनों में जैसे तुम दिया जलाते हो, पतंगे कहां से आते हैं? आते नहीं आते। वो कहां से तैयार हुए? जीव थे। उन जीवों के लिए जैसा शरीर बनाने के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए था, जैसी गर्मी जैसी नमी चाहिए थी, वो आ गई, वो तैयार हो गई। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के बॉडी में कीड़े तैयार हो जाते हैं। क्यों तैयार हुए? कहां से आए हो? वहां ऐसा एनवायरमेंट हो गया तो वहां जो जीव थे उन्होंने शरीर धारण कर लिया। कोलन, इसके लिए जैन आगम को कोई आपत्ति नहीं। इज इट पॉसिबल? बनाया जा सकता है, जेंडर चेंज किया जा सकता है, जैन आगम बन गए। ये सारी चर्चा क्यों कर रहा हूं आपके साथ कि बहुत सारी जीव सामने बातें आती है तो फिर आपको हुआ का अरे ईसु तो कौन है, ईसु किसके हो रही है? और फिर क्या चलता है कि ये अंडा जो है इनफर्टिलाइज है, इसलिए शाकाहारी, इसको खा सकते हैं। फर्टिलाइज हो कि इनफर्टिलाइज हो, वो सजीव है। वो क्या है? सजीव है। मैंने बोले इसमें से चूजा पैदा नहीं होता है, इसमें से चूजा पैदा नहीं होता है। अरे जो बांस से होती है ना, उससे भी बच्चा तैयार नहीं होता, इसलिए बांस से क्या निर्जीव है क्या? हेलो बोलो जी। जिससे जीव जीव मानी बने वो सजीव है कि नहीं? तुम भी तो किसी को जन्म नहीं देते हो, तुम भी क्या निर्जीव हो गए? पुरुष भी सजीव होने का आधार क्या है? वो आहार करता है, वो श्वासोच्छ्वास करता है, और फर्टिलाइज एक हो क्यों फर्टिलाइज एक हो वो ब्रीद करता है, और उसको जो ब्रीद का मौका नहीं मिला तो वो सड़ जाता है। इसलिए वो फर्टिलाइज है कि इनफर्टिलाइज है, वो सजीव है, उसमें से चूजे का जन्म हो या नहीं हो वो सजीव है। ऐसे बहुत सारे विषय आपके पास में। लोकतंत्र की यात्रा क्यों शुरू करें? बखान सुनता सुनता तो हो गया कल्याण। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार जैन आगम का जो सीक्रेट है वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं। तो पहला प्रयोग किस पर करोगे? आहार को कंट्रोल, यानी संयम, श्वास को कंट्रोल, सीधा बैठना, बैठते भी सीधा नहीं बैठ सको। और जब तक तुम सीधा बैठोगे नहीं तब तक ब्रीथ प्रॉपर होगी नहीं, डब जाता है ना, जैसे झुक गए ये डब गया। ये सीधा है तो ओपन है, उसको स्पेस है। इस तरीके से जीव तत्व की चर्चा और चलेगी, और चलेगी, है ना। बस छोटा सा सूत्र लेकर के बात करो बेटा, ये सजीव जीव कौन सी गति में जाएगा? ये तुम्हारा जो शरीर बना है वो किस कारण से बना है? किसी पर देवता ने, परमात्मा ने तुम्हारा शरीर बनाया? मां बाप ने तुम्हारा शरीर बनाया? मनुष्य की यात्रा इन तीनों के संगम से चलती है। कैसे? तीनों का संगम, बाप की शक्ति, माँ की

0: जीव की स्वयं की शक्ति, इन तीनों शक्तियों का जिसमें संगम होता है तो जीवन पवित्र बनता है, और इन तीनों का मिलन हो जाए और संघर्ष हो जाए, मिलने में दो बातें होती है ना, एक कॉपरेशन भी होता है और एक कॉम्पिटिशन भी होती है ना, मिलने के बाद एक संगम भी होता है क्या, फैटिंग होने के लिए मिलना जरूरी कि नहीं है, बिना मिले फैटिंग हो सकती है, बिना मिले फैटिंग हो सकती है क्या, नहीं। तो ये तीन शक्तियों का यदि संगम हो जाए तो जीवन पवित्र शुरू होता है, और मां की शक्ति और कुछ है, पिता की शक्ति और कुछ है, इन दोनों का चल रहा है महाभारत, क्या चल रहा है, हेलो, और उसमें बेचारा जो आ गया वहां पर तो सीधा कुरुक्षेत्र में पहुंच गए हो, तो आप कुरुक्षेत्र में पहुंचेगा तो गुरु रण सिंधन हो ही गया होगा, अभी कल ही रंग संसार का प्री प्लानिंग का कार्यक्रम पूरा हुआ, साधना टेलर जैसे कही मैंने दूसरी बातें करी, और उसमें एक ही बात करी, यही बात करी कि तुम दोनों का परस्पर में श्रद्धा प्रेम सौहार्द भाव होगा तो अंदर आने वाले जीव को संगम का तीर्थ मिलेगा, और तुम दोनों में ईसो नहीं ऊसो है, ऊसो नहीं ईसो है, इतने भारी बात मानो नहीं, तुम भारी बात माने नहीं, हेलो, कपल लाइफ की एक ही पहचान, कपल लाइफ समझ में आया क्या, वो शादीशुदा है या नहीं है उसकी एक ही पहचान, दोनों के बीच में मतभेद चलता रहे संघर्ष चलता रहे तो कपल पक्का है, कई अनुभव ठाकुर नाम नहीं लेता हूं, लेकिन सतीश बोस राणा ने मुझे बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया था, मैं कपिल शिविर ले रहा था 2006 में पुणे में, और कपिल शिविर मैंने कहा कि सारी दुनिया तुम्हें सयाना समझ सकती है, सारी दुनिया तुम्हारा लोहा मान सकती है, लेकिन तुमको सयाना कौन नहीं समझेगी, बोलो जी, घर वाले मस्त हो जाते हैं, उसकी नजर में तुम कभी सयान है ही नहीं, ये बात मैंने क्लास में कही शिविर में कही, और उसका थोड़ा जो भी किया तो मैंने श्रीमान जी को, श्रीमान जी ने एक बार कहा कि हमेशा पैसा मांगती है कभी अक्ल भी मांग लिया कर, तो श्रीमती जी ने पलट कर जवाब दिया जिसके पास जो होता है वही मांगा जाता है, श्रीमानी ने पलट कर जवाब दिया अक्कल होती तो तेरे साथ शादी काको करता, तेरे साथ शादी करी उसी दिन तय हो गया मुझे अक्कल, मैंने ऐसा कपल जी मैंने सुनाया, शाम को सतीश वो आए और बोले मासा बिल्कुल सही बात नहीं, मैंने कहा क्या हुआ, बोले मेरे साहब सेंट्रल मिनिस्ट्री का मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रिमंडल का मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर मेरे ऑफिस में अपने फैमिली के साथ आया था, किसी के उनके पूरे परिवार थे, बोले उनका भतीजा भी था भाई भी था सब थे बोले, और साथ में वो भी थी, चर्चा चली, और जैसे मिनिस्टर ने कुछ बीच में बोला तो बाकी सब तो चुप रहे, लेकिन घरवाली बोली तुम्ही बदी बोलू लगा तुम्हारा कहीं कड़त नहीं, हेलो, मैं लाइन नहीं दे रहा हूं क्योंकि आदि मिनिस्टर जिंदा है, उन्होंने मुझे नाम भी बताया, तो थाने सभी दुनिया है, हेलो कैसे जिला साथी थे फेरालिया में। अब ऐसा यदि कठोर नहीं रहेगा तो आने वाले जीव को धर्म क्षेत्र मिलेगा कि कुरुक्षेत्र मिलेगा? कुरुक्षेत्र मिलेगा। मैंने सुझाव दिया उनको कि एक साल के लिए तुम धर्म क्षेत्र बन जाओ, बाद में तुम आगे जो करना करो, लेकिन पेरेंट हाउस में तुमको जाना है, माँ बाप तुमको बनना है, तो कॉम्प्लिकेशन बंद करो, संघर्ष बंद करो, एक साल के बाद तुम वापस फैन ओपन कर दो। मैंने कहा एक साल के लिए फैन क्या करो, हेलो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कम से कम तुम्हारे लिए नहीं लेकिन आने वाले जो को तो मिल जाए। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल उनको दिए। मैं तो आरएम दीदी मेरे पास आते हैं ना, आरएम दीदी को मेरे पास देता हूँ, कई बार मैं टेस्ट भी करता हूँ, टेस्ट करते समझ जाता हूँ कि इसके समय में अंदर में कुरुक्षेत्र चला कि धर्म क्षेत्र चला। बच्चा मेरे पास आया शांत था और मेरे पास आया और मैंने उसको टच किया, वो मुस्कुराने लग गया, तो मैं समझ जाता हूं कि माँ बाप ने 9 महीने धर्म क्षेत्र दिया। और बच्चा मेरे पास आया, मैंने उसको टच किया कि उसे मेरा हाथ निकालने का प्रयास किया कि मैं समझ जाता हूं कि अंदर क्या चल रहा है। ये यात्रा है, इसलिए आराम गर्भ संस्कार का कार्यक्रम करा कि लक्ष्य उसका एक ही है, तुम तक कुरुक्षेत्र से जन्मे, कम से कम तुम्हारे आने वाली संतति कुरुक्षेत्र से नहीं जन्मे, इतना ही लक्ष्य उसका। और बड़ा आनंद का कार्यक्रम है। तो समझ में आयो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हो? मैं जिससे हमारे साथ भाग्य में लिखे हो शिला हूं सो हिला हेलो बोलो ना, हमेशा बोले थे जो को लिखने लाए हैं वो हुई ना नथिंग। भगवान महावीर फरमाते हैं तुम अपना कर्म का लेख चेंज कर सकते हो, तुम दूसरे का भी कर्म लेख चेंज कर सकते हो। वापस सुन लीजिए वाक्य को, 9 तत्वों की यात्रा शुरू करी तुम्हारे पास निश्चय शुरू करी है कि परमात्मा के पूरा जिन शासन का साइंस विज्ञान अध्यात्म इन 9 तत्वों में। तीर्थंकर महावीर कहते हैं तू केवल स्वयं का ही भाग्य नहीं बदल सकता है, दूसरे का भी भाग्य बदल सकता है। यू कैन चेंज एवरीथिंग, ये चेंज नहीं कर सकता है, पाटा तय नहीं कर सकता कि इस पर किसे बैठना, लेकिन मैं तय कर सकता हूं मैंने कहा बैठना, यहां बैठना कि यहां बैठना। ये पाटे ने तय किया कि मैंने तय किया? मैंने तय किया। ये जड़ है, ये तय नहीं कर सकता है, जो तय कर सकता है वो सजीव है। बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो, एक बार बोलो और एक बार बोलो, और जो तय नहीं करता है वो सजीव होकर के भी निर्जीव जैसा है, निर्जीव नहीं है लेकिन कैसा है, निर्जीव जैसा है। अड़चन में है कि आया है, पक्का आया है अड़चन में, है ना? परमात्मा कहते हैं यू आर ए रिस्पॉन्सिबल। हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आई एम रिस्पॉन्सिबल। आपा कत्ता विकत्ता या सुहाने दुहाने मेरे सुख का जिम्मेदार मैं हूं, कर्म नहीं है, भाग्य नहीं है, नियति नहीं है, मेरे सुख का जिम्मेदार मैं हूं। मैं मेरे दुख को सुख में बदल सकता हूं, मेरे सुख को दुख में बना सकता हूं, मैं मेरे दोस्तों को दुश्मन बना सकता हूं, मेरे दुश्मन को भी दोस्त बना सकता हूं। वी कैन चेंज एवरीथिंग, चेंज, आई एम अ चेंजर। बोलो बोलो बोलो, आई तो वाक्य लेके जाऊंगे, क्या हूं मैं चेंज कर सकता हूं, मैं चेंज कर सकता हूं। गाड़ी कहां जाने, गाड़ी तय नहीं करती है, करता है, ड्राइवर तय करता है। कौन तय करता है? ड्राइवर तय करता है। इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? आपकी गाड़ी यहां क्यों आई? गाड़ी ने आपको लाया कि आपने गाड़ी को लाया? हेलो, मैंने जगह का गाड़ी ने आपको लाया ना? आपने गाड़ी को लाया। इस लाने वाले को संभालो। इन नौ तत्व की शुरुआत करी है। उम्मीद करता हूं कि प्रतिक्रमण का क्लास भी शुरू हो चुका है। मुझे बाबू सेठ ने कहा है कि उन्होंने तरुण मोदी को रोक रोक के रखा हुआ है और मेरे मंगल पाठ के पहले उनको तरुण मोदी को गीत गाने के लिए समय देना है। लेकिन मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, मैं मेरे प्रोटोकॉल के अनुसार मंगल पाठ देता हूं, लेकिन आपने गीत सुने बिना उठना नहीं। दोनों की बात रह जाएगी, मेरी भी रह जाएगी और बाबू सेठ की भी रह जाएगी, है ना? बराबर है। तो तरुण मोदी का गीत होने तक आप उठेंगे नहीं। चरारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतोदमंगलम। चरार लघुतम अरिहंता लघुतम सिद्धा लघुतम साहू लघुतम केवली पन्नतोदमो लघुतम। चतारी सनम भवज्जामि अरिहंते सनम भवज्जामि सिद्धे सनम भवज्जामि साहू सनम भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम सनम भवज्जामि। चार मंगल चार तन चार शरणा दुख हरणा सुख करना और निशरणा कोई जो भूमि प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पवन।
1: सबको विनंती।
2: श्रोते मित्र हो, परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषीजी महाराज यांचं अहिल्यानगर इथं चातुर्मासानिमित्त समर्पण चातुर्मास प्रवचन मालिकेतल्या प्रवचनाचा संपादित अंश आत्ताच आपण ऐकलात।
3: रसिक हो, दर रविवारी दुपारी 2 वाजता रेडिओ नगर 90.4 FM वर पुस्तकाच्या पानातून या खास कार्यक्रमात तुम्ही ऐकू शकाल आनंद योगी पुलं या पुस्तकाचं अभिवाचन। हे पुस्तक लिहिलं आहे ना धो महानोर यांनी, तर वाचक स्वर आहे अनिल सोमणी यांचा। चला तर मग तयार व्हा पुलं यांचा आनंद विनोद आणि जीवनातील अनुभव जाणून घेण्यासाठी। दर रविवारी दुपारी 2 वाजता फक्त आणि फक्त रेडिओ नगर 90.4 FM वर पुस्तकाच्या पानातून या